मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

0: स्नेहालय संचलित स्नेहांकुर दत्तक विदान केंद्र, अनवरस, अनाथ, कुमारी माता, बलात्कारित महिला व मुलांचे कौटुंबिक पुनर्वसन स्नेहांकुर दत्तक विदान केंद्रामार्फत केले जाते. स्नेहांकुर दत्तक विदान केंद्रामार्फत आजपर्यंत 430 बालके विविध कुटुंबांमध्ये पुनर्वसित झाली. 297 कुमारी माता, बलात्कारित महिला व मुलींच्या पुनर्वसनाचे लक्षणीय कार्य केले आहे. माता व बालके यांच्या पुनर्वसनाला समान महत्त्व देणारे गंभीर आजारी मुले व बालके यांच्या पुनर्वसनाला दत्तक विधान केंद्र आहे. स्नेहालय संचलित स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्राशी संपर्क साधा. संपर्क क्रमांक 90110264681.
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं. दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम.

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम। यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: अरे होश न खोद कहीं जोश में देखने वाला।
1: स्नेहालय संचलित स्नेहाधार प्रकल्प विधवा परित्यक्ता बालमाता कौटुंबिक अत्याचारग्रस्त महिला या सर्व महिलांसाठी काम करणारा प्रकल्प स्नेहालय स्नेहाधार प्रकल्प महिलांसाठी निवास भोजन कायदेशीर सल्ला व समुपदेशन। अधिक माहितीसाठी संपर्क 90 11 36 36 00। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।

0: परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना विराजमान श्री श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब विदुषी महासती श्री जी गुरु भक्ति में तन्मय होने के लिए जीवन भर के लिए गुरुदेव के साथ का जन्म जन्म का साथ बना रहने के लिए अपने अंतर हृदय में गुरुदेव का आश्रय करने के लिए आश्रय मीन्स वेलकम, आश्रय मीन्स वेलकम, आश्रय मीन्स सुस्वागतम। उनके तन का नहीं, उनकी ऊर्जा का। तन तो कर्म का होता है, तन कर्म से मिलता है, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो उनके आत्मधर्म की आराधना से होती है। ये मनुष्य का जीवन है, ये दिखने में बड़ा स्वालंबी है लेकिन सच्चाई में बहुत परालंबी है। कितना परालंबी है याद कर सकते हो? यदि मां बाप ने बैठाया नहीं होता तो हम लेटे ही रह जाते। मां बाप ने उंगली पकड़ करके खड़ा नहीं किया होता तो हम वैसे ही रह जाते। किसी गाय के बछड़े को तुमने देखा होगा, वो जन्मते ही थोड़ी देर के अंदर उछल कूद करने लग जाता है, लेकिन आदमी के बच्चे को चलना सिखाना होता है, और जो सिखाता है वो गुरु भी हो सकता है और वो गुंडा भी हो सकता है। जिसको जैसा सिखाने वाला मिल गया वैसा ही उसका जीवन बनता है। और सिखाने की ये प्रक्रिया जैन आगम के अनुसार उस समय शुरू होती है जिस समय कोई आत्मा मां के कोक्षी में प्रवेश करती है। उस समय मां बोधपूर्वक सिखाती नहीं है, लेकिन वो सीखता है, वो आश्रय करता है, मां की आहार का, मां की ऊर्जा का, मां की ओरा का, मां की लेशा का, मां की इमोशन का, मां की फीलिंग का, और वही उसका सबसे पहला जीवन का पाठ होता है। आग्रह करूंगा आप लोगों से कि दुनिया की बहुत किताबें आपने पढ़ ली, लेकिन एक बार खुले दिमाग से तीर्थंकर परमात्मा के जैन आगमों को पढ़ने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। त्रिशला के गर्भ में जिस समय तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा का प्रवेश होता है, केवल तृष्णा की ही बात नहीं, ऋषभ देव से लेकर तो तीर्थंकर महावीर तक, भरत चक्रवर्ती से लेकर तो सभी चक्रवर्ती तक, वासुदेव तक एक ही जिक्र मिलता है। और केवल त्रिषष्टि शलाका पुरुष का ही नहीं, आगम में उनका भी जिक्र मिलता है जो माताएं इस रहस्य को जानती थी कि जैसे जीव गर्भ में प्रवेश करता है वैसे ही मां को, चाहे वो सोई हुई हो चाहे वो जागी हुई हो, जीव कभी भी आ सकता है, जीव कभी भी आ सकता है, चाहे वो सोई हुई हो चाहे वो जागी हुई हो। और जब भी जीव आता है अपने आने की दस्तक खबर मां को देता है। वो सोई हुई है तो सपने आते हैं, वो जागृत है तब भी उसके मन में बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग हो जाती है। मेडिकल साइंस उसको दूसरी भाषा में कहता है कि जिस पल गर्भ में जीव आता है उस पल मां का टेम्परेचर चेंज हो जाता है बॉडी का। चाहे वो नींद में हो चाहे वो जागी हुई हो, मेडिकल साइंस कहता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और यदि नींद में का प्रसंग जाता है आगम में कि जैसे मां को पता चलता है, मां उठ करके बैठती है, जो मां ट्रेंड है मां बनने के लिए, जिसके पास जैन आगम की परंपरा है, चाहे भगवती सूत्र हो चाहे ज्ञाता धर्म कथा हो, चाहे धारणी हो चाहे त्रिशला हो, चाहे देवकी हो चाहे चेलना हो, वो सबसे पहले एक आराधना करती है, सुमीना जागरियम जागरंती। बोलेंगे सुमीना जागरियम जागरंती, सपनों को जगाती है, पहला काम करती है कि वो जीव जिन सपनों को लेकर के आया है, वो पुण्यशाली जीव आया है तो पुण्यशाली सपनों को जगाती है। और कोई जीव यदि अशुभ सपने लेकर के आया है तो मां सपनों की जागृति कर करके उन अशुभ सपनों को धो डालती है, क्लीन कर देती है। बार बार उन सपनों को देखती है जगाने के लिए और बाद में सोती नहीं है। देव गुरु और धर्म की कथा भक्ति गीत गाते हुए अपने समय को पूर्ण करती है, अपने साथी को उसी पल जानकारी देती है और साथी भी आशीर्वाद देता है। श्रीमान जी क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कहीं जिक्र नहीं आगम में कि उन्होंने किसी पुरोहित के आशीर्वाद लिया हो। आशीर्वाद देने का पहला पहला पहला अधिकार किसी का है तो गर्भ में आए हुए जीव के पिता का। ये आगम है, और वो माँ जो सिखाती है फिर 9 महीने, वो माँ जो सिखाती मतलब आश्रम कराती है, फीडिंग कराती है, और फीडिंग के जन्मने के बाद केवल शरीर की ही फीडिंग नहीं कराती है, गर्भ में भी केवल शरीर की ही फीडिंग नहीं कराती है। क्यों? अहम गर्भ संस्कार का आज दुनिया में डंका है। आज से 25 साल पहले उठा करके देखिए, तुम्हारे जैन समाज में गर्भ संस्कार की साधना और गर्भ संस्कार की चर्चा करने वाला कौन था? और शुरुआत में तो प्रवीण ऋषि का बहुत विरोध हुआ कि गर्भ संस्कार का कार्यक्रम क्या संतों का काम है क्या है? लेकिन आज देव गुरु की कृपा है कि तुम्हारे जैन समाज में एक संप्रदाय नहीं बच रही है कि जो गर्भ संस्कार कार्यक्रम की कॉपी नहीं कर रही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि अरम गर्भ संस्कार की बुक पढ़ करके तुम कॉपी करोगे, साधना की कॉपी नहीं कर सकते हो। और देव गुरु कृपा से प्रवीण ऋषि को एक पचकान है। क्या एक पचकान है? जो पिछली बार बोला वो इस बार नहीं बोलना।
1: पक्का पक्का
0: वो पक्का पचकान इसलिए कह रहा है कि कल शाम में ईटिंग आउट ऑफ ईटिंग में ट्रेनर ने मेरे आने के पहले सीखा यहां फूड चार्जिंग करने के लिए, कि मैंने उनको सिखाया था फूड चार्जिंग का। मैं यहां आया और पहला ही सवाल आया फूड चार्जिंग का। मैंने कहा फूड चार्जिंग होती ही नहीं। क्या कहा? फूड चार्जिंग होती नहीं। और ट्रेनर को तो करंट लग गया कि अब 12 सप्ताह हो गए। और वो सारी रिपोर्ट मैंने इसको जाकर दी कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। बोले वो ट्रेनर क्या करेंगे अब?
1: ये बात है।
0: और मैंने बहुत मस्ती मजाक बोला, बहुत मस्ती बोला कि यदि फूड चार्जिंग होती हो तो मैंने कहा यहाँ पट्टे पर बैठने के बजाय मैं वो प्रसाद शाला में जाकर बैठ जाता हूँ और सारे फूड को चार्ज करके रहता हूँ, और चार्ज किया हो फूड सारे खाएंगे तो सबका जीवन बदल जाएगा। हेलो। लेकिन आई नो, तो लोग पूछते रहे क्या करते? फिर मैंने कहा फूड चार्ज नहीं करते, स्वयं को चार्ज करते हैं। किसको चार्ज करते हैं? ध्यान हम करते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, आप ध्यान करते हैं। तो आप ध्यान करोगे तो आप चेंज होंगे कि फूड चेंज होगा? हेलो। अरे बाप दवा लेगा तो बेटा ठीक होगा कि बाप ठीक होगा? तो मैंने कहा तुम्हारी ऊर्जा चेंज होती है, तुम्हारा माइंड चेंज होता है, तुम्हारा माइंड सेट चेंज होता है। और वो जब चेंज होता है तो तुम्हारे अंदर के डाइजेशन की सिस्टम चेंज होती है। अब रात भर सारे ट्रेनर जो भी यहां बैठे थे ना, उन्होंने रात भर एक ही उद्योग किया होगा। जिन जिन ट्रेनर को फोन करके कह सकते हैं उनको कहा होगा हमारा सबने इस उद्योग करिया। तो मेरी कॉपी करना देव गुरु कृपा से पॉसिबल नहीं है। मेरे पास्ट की कॉपी तुम कर सकते हो लेकिन मेरे प्रेजेंट की कॉपी नहीं कर सकते हो, कि मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे पर है और अनवरत कृपा बरसती है, और जिस पर अनवरत कृपा बरसती है वो रोज नया ही होता है, पुराना होता ही नहीं। कल प्रवर्तक से जी के साथ ऐसी थोड़ी बात कर रहा था और बात करते करते उनको कहा कि आपको उनको ढेरी जो है 1976 में शुरू हुई थी, 1975-76 में शुरू हुई थी। अब उस समय मेरी उम्र तो 17-18 साल की, और मैं उनके ढेरी के कर देखते, मैंने कहा क्या ये, तो वो कहते थे थाने भी आई ला, अबर बोलो बोले थाने भी आई ना। और मैंने उस समय कहा था कि मुझे नहीं आएगी, मुझे नहीं आएगी। तो मैंने उनको कहा कि याद है, कि बोले हाँ याद है, बोले याद है। तो चलो मूल बात पर आता हूं। तो पहला पाठ कोई सिखा सकता है तो कौन, कौन? माँ और बाप, केवल माँ नहीं, केवल माँ नहीं, माँ और बाप, इन दोनों का आते ही जीव आश्रय करता है। क्या करता है? गर्भ में आने के बाद पहला काम कोई है तो जो बाप ने दिया है, जो माँ ने दिया है, उसको 100% ग्रहण करता है। कितना बोलो? 100%। और 100% उसको होल्ड करता है और उसी के बल पर उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है। इसलिए गर्भ संस्कार में पहले मां बाप का संस्कार करते हैं, कम से कम पहले 3 से 6 महीने मां बाप को संस्कार कराने के लिए कहता हूं। तो कि जो पहला आश्रय उसके पास होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, और उसके बाद भी जिंदगी भर शुरुआत के उस समय की बात करो, आज की नहीं। आप तो सारे श्रीमंत परिवार की माताएं और श्रीमंती का शो करने वाली माताएं अपने बच्चे को 2 साल के अंदर में ही टीचर को सौंपने लगे, मदर टॉडलर स्कूल में। नहीं 2 साल में तो 3 साल की उम्र में तो लोअर केजी अपर केजी में भेजने की तैयारी हो ही जाती है। और वही समय है कि जिस समय मां बाप ने उसको इंजेक्शन देना चाहिए, माँ बाप ने उसको दवा देनी चाहिए, माँ बाप ने उसको टॉनिक देना चाहिए। और वही समय आज के सारी हमारी एजुकेटेड श्रीमंत संपन्न समृद्ध माताएं अपने समृद्धि का उपयोग करते हुए अपने संतति को दरिद्री बनाती है। और फिर वो वहां जाता है, लेकिन उस समय की बात है कि कम से कम 6 साल तक जो है, 5 साल तक जो है, बच्चा टोटली केवल माँ बाप, दादा दादी और परिवार से ही पोषण, संस्कार, इंजेक्शन, आश्रय के 3 प्रकार। आश्रय के कितने प्रकार? कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक जीव आश्रय करता है, कौन? जीव स्वयं आश्रय करता है। एक कोई उसको प्रेम से कराता है, और जब वो प्रेम से दिया हुआ लेने से इनकार करता है तो इंजेक्शन देता है। याद आ रहा है आपको? आपके मां बाप ने आपको पहले क्या कहा? पहले फीडिंग कराया, आराम से करते थे, बाद में बोल करके कराना शुरू किया, और जिस समय उनके प्रेम से बुलावा नहीं सुनते थे तो अनुशासन का इंजेक्शन देकर के सिखाते थे, वो आश्रम है। एक बात का उत्तर दे सको तो जरूर दीजिए। आप अपने संतान को सुखी करते हो कि समर्थ बनाते हो? व्हाट इज योर एम? व्हाट इज योर टारगेट? व्हाट इज योर फोकस? मैंने सवाल पूछा, कोई तो जवाब दे सके। सुखी, क्या सुखी? हर माँ बाप आज यही प्रयास करता है। आज के नए माँ बाप पुराने माँ बाप समर्थ बनाते थे। जीजा भाई ने छत्रपति शिवाजी को समर्थ बनाया है, सुखी नहीं बनाया है। और समर्थ कभी दुखी नहीं होता है और सुखी कभी सुखी रहता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? उसने डिमांड करी और तुमने पूरी करी, उसने डिमांड करी और आपने पूरी करी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? जोर से। उसने मोबाइल मांगा, दे दिया। और दादा तो एक नंबर देने में। गुरुदेव की गाथा चल रही है, और ये दादा जब तक सुधरते नहीं ना, तब तक आने वाली जनरेशन के सुधरने की कोई संभावना नहीं है। बच्चे को मोबाइल देने वाले मां बाप और दादा दादी अपने बच्चे के दुश्मन है। बचपन में एडिक्शन लगा दिया उसको, और एक बार एडिक्शन लगने के बाद कोई बाहर आ सकता नहीं है। और जिसको बचपन में एडिक्शन लग गया, फिर वो बाद में तो उस, और पूरा मेडिकल साइंस चीख चीख करके कह रहा है, कई गवर्नमेंट कानून बना चुकी है, चीख चीख करके कह रहे हैं कि बच्चे का दिमाग सिंक होते जा रहा है। जो बच्चे के दिमाग का आकार 80 साल में होना चाहिए था, वो 8 साल में हो रहा है। कोई बुरा मत मानना, लेकिन थोड़ी सी पीड़ा आपको देने का मेरा मन हो रहा है। दियो क्या थोड़ी पीड़ा? देव ना? ओके, धन्यवाद। याद करो महाभारत को, याद करो महाभारत को। दुर्योधन की हर तमन्ना धृतराष्ट्र ने पूरी करी, दुर्योधन की हर तमन्ना धृतराष्ट्र ने पूरी करी। धृतराष्ट्र ने ही नहीं, गांधारी ने भी अपने जीवन का नियम तोड़ करके दुर्योधन की तमन्ना पूरी करी। कुंती ने पांडु की एक तमन्ना पूरी करी। क्या पूरा महाभारत उठा करके देखिए कि पांडवों ने कुंती से कुछ मांगा हो और कुंती ने उसको दिया हो। धृतराष्ट्र और गांधारी, दुर्योधन ने मांगना और कल्प वृक्ष बन करके देना, और कुंती ने कभी दिया नहीं। उसने तो पांडव को मांगने की आदत ही नहीं लगाई, मांगा ही नहीं पांडवों ने। एक ही आदत लगाई थी कि जो मैं कहूंगी वो करना है, तुम जो कहोगे वो मैं नहीं करूंगी, मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। पूरे महाभारत में देखिए, पांडव अपने मां, अपने गुरु और अपने श्रद्धे जो कहते वो करते हैं, उनका एक श्रद्धे नहीं है जो उनकी तमन्ना पूरी करता है। आप अपने संतति को पांडव बना रहे हो कि दुर्योधन बना रहे हो? हु आर यू? धृतराष्ट्र और गांधारी। मैंने पहले कहा था मैं पीड़ा दे रहा हूं, पहले मैं बिना पूछे थप्पड़ मारता था, पूछ करके थप्पड़ लगाता। कौन सा अच्छा है, पूछ करके थप्पड़ लगाना अच्छा है कि बिना पूछे थप्पड़ लगाना अच्छा है? दोनों भी अच्छे हैं। चलो सामने तो इतना बोल लिया, अच्छा है। अनिल भाऊ, मैंने 40 साल पहले लगाई हुई थप्पड़ के आधार पर लोग अब तक मुझे थप्पड़ लगाते हैं। सबको पता है, मुझे भी पता है, और नगर वालों को तो पक्का पता है कि सबसे ज्यादा थप्पड़े किसी ने खाई है तो नगर वालों ने खाई है। ऐसा ही है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि दोनों थप्पड़ अच्छी लगती है तो गुरुदेव की कृपा है ना? माहौल सा बनो। क्या बनो? माहौल सा बनो। माहौल सा ने, उसके बेटे ने जो चाहा वैसा जीवन बेटे को जीने ही नहीं दिया। रिपीट कर रहा हूं, माहुलसा ने अपने बेटे को वो जीवन जीने ही नहीं दिया जो वो जीना चाहता था, जो वो जी रहा था।

यदि माहौल सा ने गुरुदेव के बचपन में जैसा वो चाहते थे वैसा जीने दिया होता, तो ना तुम होते, ना तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा पक्का पता है कि मैं नहीं होता।

वो नहीं करने दिया जिसमें उसको आनंद आता था। पिता की आयुष्य पूरी हुई बहुत कम उम्र में, जिस समय मुश्किल से 8-9 साल के होंगे। और स्कूल में गए उस समय पिता का आशीर्वाद लेकर गए, और जब वापस स्कूल में से लाया गया तो आशीर्वाद देने वाला नहीं रहा। मां नहीं होती है तो संतति निराधार हो जाती है, और पिता नहीं होता है तो संतान अनाथ हो जाती है। पिता छत्र है, मां धरती है। बुद्धि में समझे या नहीं समझे, लेकिन दिल में तो पीड़ा होती ही होती है बाप के न होने की। ये जिंदगी की ट्रेजेडी है कि जिनको बाप रहते नहीं उनको पीड़ा होती है, और जिनको बाप रहते हैं उनको कदर नहीं होती है। शोकांति का है, ये दुर्भाग्य है कि जिनको नहीं है उनको पीड़ा होती है, और जिनको है उन्हें कदर नहीं होती है। और निमिचंद बाप के दुख को भुलाने के लिए, बाप की मौत का दुख भुलाने के लिए चिचुंडी के विठल के मंदिर में जाने लग गया, कीर्तन में जाने लगा, भजन में जाने लग गया, और भजन में उसका मन रमने लग गया। उसने वहां पर अपने पिता का स्वरूप पाया, मन रमने लगा। आवाज तो गुरुदेव का, यदि वो

और भजन गाते थे तो सारा भजनी मंडल झूम जाता था, अभंग। और माँ ने देखा है कि ये तीर्थंकर को छोड़कर के दूसरी तरफ जा रहा है, ये तीर्थंकर को छोड़कर के दूसरी तरफ जा रहा है, मैंने इसको तीर्थंकर का नाम दिया है, निमिनाथ बनाया मैंने इसको, निमिचंद बनाया है, और ये तीर्थंकर को छोड़कर के दूसरी तरफ जा रहा है। और मां इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मेरा बेटा तीर्थंकर को छोड़कर के और कहीं जाए, मां को मंजूर नहीं है। ध्यान से सुनना, मां वही होती है जो उसको जो मंजूर है वही संतति में कराती है, बाकी तो सब जन्म देने वाली मादाएं हैं। जिसके वचन, जिसका अनुशासन बच्चे के जिंदगी में वरदान बनकर के फलता है वही मां है। और ऐसी मां गुरुदेव को मिली, मां हुलसा ना होती ही तो गुरुदेव ऐसे नहीं होते, मां को मंजूर नहीं है कि तीर्थंकर को छोड़ करके कही जाए। अरे उस समय की बात है, सन 1907 8 9 10 की बात है, वहां से 115 साल पहले की बात है। उस समय महाराष्ट्र में उंगली पर गिने जा सके इतने भी संत और सत्यानी थे, लेकिन मां हुलसा को पता था, उसको पढ़ते नहीं आता था, लेकिन उसको एक दिल उसका बहुत पड़ा हुआ था। आज की बेनों का दिमाग पढ़ा हुआ है और दिल डूबा हुआ है, मां हुलसा का दिल डेवलप था, कोई अक्षर बोध नहीं था उसको। और आज सारी रिसर्च कह रही है आई क्यू से भी ई क्यू महत्वपूर्ण है, भावना सुंदर स्वस्थ हेल्दी होना ये जीवन के लिए अनिवार्य है, जीवन की सफलता के लिए जरूरी है, ये आज का पूरा साइंस कह रहा है। और मां हुलसा ने निमिचंद को कहा है कि तू वहां नहीं जाएगा, मैं फिर कहता हूं मां के पास बुद्धि नहीं थी, दिल था। आज की माताएं बुद्धिमान है, दिलदार नहीं है। गुत्सी बेरानी बेराओ, नहीं बेरानी मत बेराओ, दो टेंशन। आज की माताएं बुद्धिमान है, और माहौल सा दिलदार थी। मां ने कहा नहीं जाना वापस, और बेटे ने कहा क्यों नहीं जाना, वहां कोई मैं झगड़ा करता हूं, वहां मैं कोई गालियां देता हूं, भक्ति करता हूं। अब मां बेटे को कहे नहीं अपना नहीं उठे नहीं जाऊं नो, अब बेटे को समझ ही नहीं अपना क्या पराया क्या, भजन करना। और मां ने कहा मैंने कहा नहीं जाना नहीं जाना, ठीक है क्या बोला, हिटलर यस। एक समय में मां ने अनुशासन के लिए हिटलर बनना ही चाहिए,

0: पिता ने बनना ही चाहिए। और जो उस समय अनुशासन नहीं करते फिर उनको बुढ़ापे में बच्चों के दुशासन में रहना पड़ता, अनुशासन में नहीं। माँ ने कहा नहीं जाना और बेटा कहे मैं जाऊंगा, मुझे कारण बताओ क्यों नहीं जाना। मैंने कहा ना नहीं जाना, जुबान मत लड़ाओ महाराज से, कह दियो ना एक बार नहीं जाओ ना। और बेटा कहे कि मुझे पहले बताओ क्यों नहीं जाना है। मैं जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा। और माँ ने कहा याद रख, यदि तू वहां गया और रात को घर में आने का प्रयास किया तो दरवाजा खुलेगा नहीं, रात को तुझे घर में एंट्री मिलेगी नहीं। मेरे घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी, मेरे घर में रहते हुए मन मर्जी से तू नहीं जी सकता है। बेटे को लगा मां बोले कहीं करीना, और पौष माह का महीना ठंडी के दिन, और ठंडी के दिनों में आज भी महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में रात के भजन कीर्तन में अच्छी भीड़ होती है। बेटा गया, मां की मना करने के बाद गया और पूरा होने के बाद लौट करके आया है। रात के 10 बजे होंगे, दरवाजा की कुंडी बजाई, आवाज दिया, नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स, जोर से बजाया और मां ने उतने ही जोर से उत्तर दिया, दरवाजा बजाना नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मां ने हिंदी में नहीं बोला। और बेटे को पता चला कि दरवाजा खुलने वाला नहीं, दरवाजा बजाना बंद हो गया। और मां ने सोचा कि बेटा किसी दोस्त के घर जाकर के सोया, लेकिन ये तो अलग ही आत्मा थी। और कहीं जाकर के गिड़गिड़ाने का सवाल ही नहीं था, और किसी के पास रोना रोना और किसी के पास दामन फैलाना मंजूरी नहीं था। वो 8-9 साल का बच्चा ठंडी के दिन वही वही देहरी पर सर टेक करके रात बिताती है ठिठुरते हुए। भोर की वेला में मां उठी, दरवाजा खोला, देखा बेटे को ठिठुरते हुए वही पड़ा हुआ। सिहर उठी मां, मैंने क्या सोचा न क्या हुआ, उठाया और कहा तू मानता क्यों नहीं है। और गुरुदेव कहते थे जो जो मुझे जिद्दी कहते हैं ना वो सुन ले, गुरुदेव कहते थे मैं भी बचपन में जिद्दी ही था। कौन कहते थे? हाँ गुरुदेव जिद्दी थे। तो मैं जिद्दी रहूं तो कुछ तुम्हें उंगली उठाने की जगह नहीं होनी चाहिए। और बेटे ने फिर कहा मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो दरवाजा खोल मत खोल, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन मां की एक ही तमन्ना, एक ही सपना, कि बेटे ने तीर्थंकर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आत्ताच आपण ऐकलात।
2: मानवी तस्करीच्या विरोधात कृतिशील संघर्ष करणारे स्नेहालयाचे संस्थापक डॉ गिरीश कुलकर्णी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आजवरच्या वाटचालीचा प्रवास उलगडणाऱ्या अप अगेन्स्ट डार्कनेस या मेधा देशमुख भास्करन यांनी लिहिलेल्या इंग्रजी पुस्तकाचा फिटे अंधाराचे जाळे हा मराठी अनुवाद केला आहे सुनंदा सदाशिव अमराबूरकर यांनी। सकाळ प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचं अभिवाचन आपण आता रेडिओ नगर 90.4 FM वर दर रविवारी रात्री 8 वाजता क्रमशः ऐकू शकाल। अभिवाचन केलं आहे रिमा सदाशिव अमराबूरकर यांनी।